0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: जी हाँ, और लेकर नॉनस्टॉप गपशप मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा। ट्यून किया है आपने 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का एफएम रेनबो चैनल। 10:09:33 सिलसिला गपशप का जारी रहेगा, बिल्कुल नॉनस्टॉप गपशप होती रहेगी पूरे 11 बजे तक। कार्यक्रम की शुरुआत हुई सैयारा के टाइटल ट्रैक के साथ, सुना हमने फहीम अब्दुल्ला को। न मौसम रूठा है न सैयारा बदला है, बारिश थी बारिश है और अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ मध्यम से हल्की बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें अगर गुजरे कल की, तो गुजरे कल में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री यानी कि सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। उच्च आर्द्रता 94% और निम्न आर्द्रता 65% रही। वो बातें हैं जो आज के दिन याद आती हैं हमें, कौन कौन से हैं वो शख्स जिन्होंने आज के दिन जन्म लिया है, ये सारी बातें एक के बाद एक सिलसिलेवार आप तक पहुंचेंगी। आपको नुस्खे भी दिए जाएंगी, चुटकी भर या कि फिर मुट्ठी भर, और साथ ही साथ होगी आपसे बातचीत। आपसे बातचीत करने के लिए हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो आप सबको है पता, लेकिन एक बार फिर बता दूं, 2213-1341 जो आपके लिए खुल जाएगा 10:30 से। और आज बातें क्या होंगी, बारिश के मौसम में आपने ध्यान दिया होगा कपड़े, जी हाँ कपड़े, मुझे नहीं पता अगर वो बात कर सकते तो शायद अपनी फीलिंग्स बता पाते कि उन्हें बारिश में मजा आ रहा है भींग भींग कर, या कि फिर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, कहीं हमारे कपड़ों को भी तो सर्दी नहीं हो गई। और ये जो हमारे कपड़े हैं उनका आलम ये होता है कि हर घर में छत, बालकनी, खिड़कियों पे बंधी हुई डोरियां घर के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं और कपड़े घरों के अंदर छांव में सुखाए जाते हैं। तो बारिश के मौसम में आपके घर के भीतर बंधी हुई डोरियां क्या कहती हैं आपसे, कैसा फील कराती हैं, क्या कभी उन डोरियों ने आपको कुछ अलग सा महसूस कराया है। घर में अचानक बिना बताए कोई मेहमान आ गया और पूरा घर कपड़ों से भरा हुआ है, बीचों बीच घर के एक क्रॉस डोरी बंधी हुई है जिसपे कपड़े लटक रहे हैं, या कि कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही घर में चलने फिरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि घर के आड़े तिरछे कहीं भी डोरियां बंधा कपड़े सुखा दिए जा रहे हैं। जी हाँ, यही सारी बातें होंगी आज इस नॉनस्टॉप गपशप में। फिलहाल आपके लिए अरिजीत सिंह और अरमान खान धुरंधर से।

0: आज के दिन। जब बात करते हैं हम आज के दिन की, यानी कि 1 अगस्त की, तो आज का दिन विश्व स्तनपान दिवस, माँ के दूध के महत्व और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आज का दिन समर्पित है और भारत में इसे विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यानी कि एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक सप्ताह, जो पूरे वर्ष की नीतियों को तय करता है और विशेष रूप से जन जागरूकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि जन जागरूकता ही वो एक माध्यम है जो किसी भी अभियान को सफल बना सकता है। आज का दिन वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में भी मनाया जाता है, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। कैंसर के कारण बचाव के प्रति लोगों को जानकारी देने के लिए आज के दिन को तय किया गया है और आज के दिन को नेशनल माउंटेनियरिंग डे, विश्व राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, पर्वतारोहियों के साहस और रोमांचक खेल को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। कौन कौन से लोग हैं जिनका आज है जन्मदिन, बिल्कुल ये बात भी होगी आज के दिन के अगले अंक में, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक गीत।
1: आज के दिन

0: आज के दिन। वक्त हो चुका है अब कार्यक्रम में आज के दिन जन्मे लोगों की बातें करने का, उन्हें जानने का। तो आज ही के दिन भारतीय मुक्केबाज रोहित टोकस का जन्म हुआ था वर्ष 1993 में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास स्थान रखने वाले राजनीतिज्ञ रामवीर उपाध्याय का जन्म हुआ था वर्ष 1957 में। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल का जन्म हुआ वर्ष 1955 में। गोवा के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक व निबंधकार दामोदर माउजो का जन्म हुआ वर्ष 1944 में। प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का जन्म हुआ वर्ष 1939 में। महान स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ वर्ष 1882 में। और वर्ष 1869 में हरकोर्ट बटलर, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, आपका जन्म हुआ। बात करें अगर बॉलीवुड के हवाले से, तो शुरू करेंगे छोटे से। वर्ष 1987 में दिल्ली में जन्म हुआ अभिनेत्री तापसी पन्नू का। वर्ष 1932 में ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का जन्म हुआ। और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म हुआ वर्ष 1913 में। ये तो हुई बातें किसकी, आज के दिन की।
1: आज के दिन
0: सुन लेते हैं गीत। और जब गीतों की बात होगी तो किसे पहले सुना जाए, जन्मदिन के तीनों ही कलाकार एक के बाद एक हैं तैयार। तो शुरुआत करते हैं भगवान दादा से। सुनते हैं चितलकर की आवाज फिल्म अलबेला से, उस गीत को जिसे जब फिल्म लूडो में नई जनरेशन ने सुना तो एक बार फिर उस गीत के फैन हो गए। लेकिन इस गीत को वर्ष 1951 में राजेंद्र किशन ने लिखा था, सी रामचंद्र का संगीत निर्देशन था, यानी कि हमने फिल्म लूडो में इसी गीत के रीमेक को सुना है। आइए सुनते हैं उसी गीत को भगवान दादा के अभिनय से सजे चितलकर की आवाज में।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम

0: मीना कुमारी की अदाकारी से सजा गीत, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और गुलाम मोहम्मद का संगीत फिल्म पाकीज़ा से। और जब बात दुपट्टे की चली है तो बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि मेरा दुपट्टा, हमारा दुपट्टा, आपका दुपट्टा, सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं दाग, कीचड़ के, पानी के छींटे, सड़क पर चलते हुए पानी और धूल जब एक साथ मिलकर और वो छपाक करते हैं हमारे कपड़ों पर तो दे जाते हैं वो एक दाग। अब उस दाग को कैसे हटाएं?
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: जी हाँ, बिल्कुल वही नुस्खे आज मैं आप तक पहुंचाऊंगी जो हमारी कपड़ों पर लगे कीचड़ के दाग को हटाने के काम आएंगे। सबसे पहला काम, जो सबसे खास हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कीचड़ हटाने के लिए उसे गीले पे मत छेड़ें, सूख जाने दें, क्योंकि जैसे ही आप गीले कपड़े को, गीले दाग को छेड़ेंगे वो और अपना एरिया बढ़ा लेगा। उसे पूरी तरह सूख जाने दें, फिर ब्रश या चम्मच के पिछले हिस्से से खुरच कर अतिरिक्त मिट्टी को हल्के हाथ से हटा लें। बेकिंग सोडा और नींबू, एक चम्मच बेकिंग सोडा, नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे दाग पर लगाएं। 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर हल्के हाथों से रगड़कर साफ पानी से धो लें। आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका और डिटर्जेंट मिलाकर भी कपड़े को 20 से 30 मिनट के लिए भिंगो कर रखें, जिससे दाग आसानी से निकल जाएगा। फिर उसे सामान्य तौर पर जिस तरह आप डिटर्जेंट में अपने कपड़ों को धुलते हैं, धुल लें और देखें कैसे दाग हो जाता है गायब। ये बिल्कुल आजमाया नुस्खा है, आप भी आजमा कर देखें।
1: एक चुटकी नुस्खे।
0: ये तो बात हो गई नुस्खों की। अगर आप जुड़ना चाहते हैं दिल से दिल तक तो हमारे टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, लेकिन लेकिन लेकिन हमसे जुड़ने के लिए हमारे कार्यक्रम को आपको सुनना होगा। बिना सुने अगर आप हमारे औरूप की तरह कॉल करके बोलेंगे कि टॉपिक क्या है, मुझे नहीं पता, जस्ट मैंने रेडियो ट्यून किया और कॉल लगा दिया, तो भाई साहब सुनना तो पड़ेगा टॉपिक जानने के लिए। एक बार फिर बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं घर के अंदर बारिश के मौसम में घर के अंदर बंधी हुई कपड़े सुखाने की डोरियां और उनसे क्रिएट हुए कुछ फनी, कुछ वियर्ड से मोमेंट्स की। सॉल्ट लेक से श्रुति ने किया था कॉल और श्रुति ने अपना एक छोटा सा अनुभव बताया। घर के अंदर डोरी बंधी हुई थी, वो निकल रही थी स्कूल के लिए और कोई कपड़ा जिसमें बटन लगा हुआ था, छोटा कपड़ा, उनके बालों में अटक गया। उन्हें खबर भी न लगी। जब वो घर के बाहर निकल के अपने पिकअप पॉइंट पर खड़ी थी तब दौड़ते हुए उनकी मम्मी आई और उनके बालों में फंसा हुआ वो छोटा कपड़ा निकाल कर ले गई। तब से उन्हें बारिश के मौसम में घर के अंदर बंधी डोरियां देखकर डर लगता है। वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहती हैं कि कहीं फिर कोई ऐसी ही दुर्घटना ना हो जाए। हालांकि अब वो स्कूल से आगे बढ़कर नौकरी में आ चुकी हैं, लेकिन बचपन में हुई ये घटना आज भी उनके दिमाग में तरोताजा है। फिलहाल वादे के मुताबिक सुन लेते हैं इस गीत को।

10:45 और 30 सेकंड कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप पूजा है आपके साथ। ट्यून किया है आपने 107 MHz पर आकाशवाणी कोलकाता का FM रेनबो चैनल। जुड़ चुके हैं आप दिल से दिल तक। फिलहाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं रोहिणी, न्यू टाउन से रोहिणी। हेलो हेलो, आप ऑन एयर हैं। लगता है रोहिणी से हमारा संपर्क टूट चुका है। रोहिणी ने बताया कि जब वो कॉलेज में थी तो उनके एक दोस्त के घर गई, अचानक पहुंच गई। बारिश का मौसम था, बारिश से बचने के लिए ही वो अपने दोस्त के घर पहुंची थी और जब वहां उन्होंने देखा

कि घर में घुसते ही सामने डोरी बंधी हुई है जिस पर काफी सारे कपड़े सूख रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा सा लगा और फिर घर आकर उन्होंने पहला काम यही किया कि उन डोरियों को खोल कर रख दिया। तो उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये कुछ अच्छा नहीं लगता। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी और माँ ने फिर दोबारा बांध ली ये कहकर कि हम सुंदरता देखेंगे या सुविधा, बस बारिश तक ही तो बंधे रहना है, फिर खोल दिया जाएगा। लेकिन अब जब रोहिणी का अपना खुद का घर है तो वो कभी भी घर के अंदर डोरियां नहीं बांधती हैं। इवन वो अपने कपड़े सुखाने के स्टैंड को भी कभी घर के उस हिस्से में नहीं लाती जो उनका प्रेजेंटेबल एरिया है, जो उनका ड्राइंग रूम है, जो उनका गेस्ट रूम है। और कोशिश ये रहती है कि कपड़ों को रात में सुखाया जाए और सुबह होने से पहले हटा लिया जाए। कपड़े भी क्या कमाल की चीज़ है ना,

हमारे साथ जुड़ी थी बेलगौरिया से पायल, और पायल के हिसाब से ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। बारिश का मौसम है तो घर के अंदर ही तो कपड़े सुखाए जाएंगे, और क्या करेंगे। एक हमारे साथ और हमारी कॉलर जुड़ी थी, मैं बिल्कुल मिस कर गई, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, उनका नाम जानना। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव सी बात कही, जो घटना उनके खुद के साथ घटित हुई थी। बारिश के मौसम में घर के भीतर कपड़े सूख रहे थे और उससे बूंद बूंद कर टपके हुए पानी पर उनका पैर फिसल गया। कमर में लगी चोट आज सालों बाद भी उन्हें दर्द देती है। कस्बा से मिथुन जुड़े थे, और मिथुन की तो सबसे खास बात ये थी कि इन डोरियों को लेकर, घर के अंदर बंधने वाली डोरियों को लेकर मेरी माँ इतनी सहज और इतनी सजग थी कि जब हमने अपना नया घर बनाया तो उसमें सिर्फ छत पर ही नहीं लोहे के एंगल्स लगवाए गए जहाँ डोरियाँ बंधी, घर के भीतर भी हुक्स लगवाए गए जिसमें बारिश के मौसम में वो प्रॉपर डोरियाँ लगाती है और उन पे कपड़े सुखाती है, और किसी की नहीं सुनती। फिलहाल घड़ी की सुइयां कह रही हैं आज के लिए कार्यक्रम बस यहीं तक। दीजिए इजाजत अपनी दोस्त, अपनी होस्ट पूजा को कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप से, इस वादे के साथ, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे और जुड़े रहेंगे दिल से दिल तक। चलते चलते आप सभी के नजर सिद्धांत मिश्रा और बी प्राक।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे इस सुहानी दिन में। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम तीन का तड़का का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ, तीन का तड़का है प्रोग्राम का नाम और मैं पापिया हूँ आप सभी के लिए, जहाँ होती है बॉलीवुड की चटपटी खबरें और साथ ही साथ कुछ चटपटे गीत भी। तो इस दिन के इस समय जब खाना खाने के बाद भाई ज़बरदस्त नींद आती है, तो ऐसे में अगर कुछ ज़बरदस्त गाने सुने जाए काम करते करते, तो फिर दिन तो बन ही जाता है। तो चलिए, शनिवार का दिन है तो शुरुआत करते हैं इस गाने से।

तो इस जबरदस्त गाने के बाद चलिए पहले तड़के की ओर चलते हैं जी। हाँ, ये और ये तड़का जो है वो बॉलीवुड का नहीं बल्कि सीधे हॉलीवुड से है। मार्वल के प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। हॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। 30 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने रिलीज के महज 2 दिनों में ही 100 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार कर लिया और इसके साथ ही ये भारत में 2 दिन के भीतर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाले चुनिंदा बॉलीवुड फिल्मों की सूची में शामिल भी हो गई है। जस्टिन डैनियल क्रिटन की निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म ने पहले 60 करोड़ 60 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं दूसरे दिन भी दर्शकों का उत्साह बरकरार रहा और फिल्म ने 39 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की। इस तरह भारत में 2 दिन के कुल नेट कलेक्शन में 109 करोड़ 95 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 131 करोड़ 46 लाख रुपए दर्ज कर दिया गया है। फिल्म की इसी धमाकेदार शुरुआत ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे अब एवेंजर्स इन गेम के उस खास क्लब में शामिल हो गई है जिसने भारत में रिलीज के सिर्फ 2 दिनों के भीतर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। गौरतलब है कि एवेंजर्स इन गेम ने यह उपलब्धि साल 2019 में हासिल की थी। शानदार ओपनिंग, जबरदस्त दर्शक प्रतिक्रिया और लगातार मजबूत कमाई को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कई और नए रिकॉर्ड बना सकती है। फिलहाल मनोरंजन जगत से इतनी ही बड़ी खबर, जुड़े रहिए हमारे साथ। दूसरे तड़के की ओर चलेंगे पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना भी विशाल मिश्रा श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

तो दोस्तों चलिए मनोरंजन जगत के अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों साउथ की जननायक और बॉलीवुड की धमाल फोर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही थी। दोनों फिल्में घरेलू बाजार के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। बात करें धमाल फोर की तो अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्म 10 जुलाई को रिलीज हुई थी, फिर बिना बड़े प्रमोशन के रिलीज होने के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी पकड़ बना रखी। और अगर आंकड़ों की देखें तो आंकड़ों के अनुसार रिलीज 22वें दिन फिल्म के करीब 1 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया गया। इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 156 करोड़ 90 लाख रुपए और ग्रॉस कलेक्शन 186 करोड़ 98 लाख रुपए तक पहुंचा। वहीं दुनिया भर में धमाल फोर अब तक 216 करोड़ और 68 लाख रुपए का कारोबार कर चुकी है। दर्शकों का अच्छा रिस्पांस देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फिल्म आने वाले दिनों में भी अपनी कमाई का सिलसिला जारी रखेगी। फिलहाल मनोरंजन जगत की इन खबरों का सिलसिला थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, सुन लेते हैं हमारा अगला गाना सुधांशु राज खरे की आवाज़ में।

अब भाई स्पाइडरमैन के बाद एक और फिल्म है जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और जिसकी लिए लोग काफ़ी उत्सुक है, वो है कन्नड़ सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक, अ फेयर फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आया है। मेकर्स ने इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट को ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फैंस का उत्साह और बढ़ गया है। कब रिलीज होगा ये ट्रेलर? यश ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए बताया कि टॉक्सिक का ट्रेलर 8 अगस्त 2026 को रिलीज किया जाएगा। पोस्टर के साथ उन्होंने लिखा कि द काउंटडाउन हैज बिगन, यानी अब फिल्म के रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो कब हो रिलीज होगी ये फिल्म? निर्देशक गीत मोहनदास के निर्देशन में बनी ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, उमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। ये फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट की गई है और हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम सहित कई भाषाओं में भी रिलीज होने वाली है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, सीधी कॉकटेल जूस से। उसके बाद बादशाह सुनिधि चौहान के आवाज़ में सुनेंगे उनकी एल्बम का अगला गाना।

बढ़ते हैं हमारे अगले तड़के की ओर इस जबरदस्त गाने के बाद. एल्विश यादव, दोस्तों एल्विश यादव करेंगे बॉलीवुड डेब्यू, यानी कि और टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन फिल्म में आने वाले हैं नजर. जी हाँ, यूट्यूबर और रियलिटी स्टार एल्विश यादव अब बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं. निर्माता विक्की जैन ने अपने नए प्रोडक्शन हाउस बीजी फ्रेम्स की शुरुआत करते हुए अपनी पहली फिल्म का ऐलान कर दिया है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, अभिषेक बैनर्जी और एल्विश यादव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन रेमो डिसूजा करेंगे और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्शन फ्रेंचाइजी की शुरुआत होगी. फिल्म की शूटिंग 1 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है, यानी कि आज ही से. इसकी जानकारी हमें फिल्म ट्रेंड एनालिस्ट से मिली है और कई सारे रिपोर्ट्स भी अभी सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं. एल्विश यादव इससे पहले वेब शो भी कर चुके हैं उसका, और अभिनय की दुनिया में यानी कि वो कदम रख चुके हैं ऑलरेडी. अब बड़े पर्दे पर उनका डेब्यू की खबर फैंस को काफ़ी उत्साहित भी कर रही है और सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने उनकी बधाइयां देते हुए उनकी मेहनत और सफ़र की सराहना भी की. तो फिलहाल एज एन एक्टर तो वो भले ही डेब्यू कर चुके हैं, पर बड़े पर्दे पर जब थिएटर में लोग उन्हें देखेंगे तो क्या रिएक्शन आने वाला है, ये जरूर देखने लायक होगा. फिलहाल बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगले गाने की ओर. अरिजीत सिंह और पलक मूछल की आवाज़ में तेरी मेरी कहानी, गब्बर रिस्पेक्ट से. उसके बाद सीधे चलेंगे परियोजना प्रस्तुति की ओर.

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: नमस्कार दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति के एक नए अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज परियोजना प्रस्तुति के संग में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के बारे में। कभी सोचा है कि कॉलेज के क्लासरूम और असली काम की दुनिया के बीच जो बड़ा सा गैप होता है उसे कम कैसे किया जाए? यही जगह है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की आती है। इस योजना की सोच बड़ी सीधी है, युवाओं को पढ़ाई के साथ ही ऐसा अनुभव मिल जाए जो भविष्य में नौकरी, प्रशासन या नीति निर्माण की राह आसान कर दे। यहाँ छात्र मंत्रालयों, सरकारी विभागों और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हैं। इंटर्नशिप आम तौर पर 2-3 महीने की होती है। इस दौरान युवाओं को सिर्फ फाइलें देखने का काम नहीं दिया जाता, बल्कि वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम करने, रिसर्च करने और निर्णय प्रक्रिया को समझने का मौका भी मिलता है। सरकारी सिस्टम को नजदीक से देखने या अनुभव कई बार किताबों से कहीं ज्यादा होता है। योजना में शामिल छात्रों को ट्रेनिंग, लगातार मार्गदर्शन, निर्धारित स्टाइपेंड और इंटर्नशिप पूरा होने पर एक अधिकृत प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, छात्रों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, कि मैं हाँ कर सकता हूँ। दूसरा, आगे चलकर नौकरी या उच्च अध्ययन में ये अनुभव उन्हें अलग पहचान भी देता है। इस योजना का असली सार यही है, युवाओं को देश की नीतियों, योजनाओं और सरकारी कामकाज की रफ्तार से जोड़ देना। लंबी दूरी छोटी हो जाए और भविष्य की शुरुआत थोड़ा आसान बन जाए। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इसी के लिए है।
0: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

चलिए परियोजना प्रस्तुति के संग के बाद अब आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना प्रिया सरैया और दिव्या कुमार की आवाज़ में।

बॉलीवुड से एक खबर जो कि बहुत अच्छी तो नहीं है, क्योंकि शूटिंग के दौरान घायल हुई है रश्मिका मंदाना। जी हाँ, दक्षिण भारत और बॉलीवुड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना शूटिंग के दौरान एक स्टंट सीन करते समय घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी, जिसके बाद मेडिकल जाँच कराई गई। डॉक्टरों ने जाँच करने के बाद रश्मिका को पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है, ताकि वो जल्द स्वस्थ हो सके और चोट गंभीर न हो। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चोट के कारण उनकी आने वाली फिल्मों की शूटिंग कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। हालांकि उनकी टीम की ओर से बताया गया कि रश्मिका डॉक्टरों की निगरानी में है और जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर काम पर भी लौटेंगी। फैंस सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं और हम सब भी मिलकर उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। स्पेशली जो भी रश्मिका मंदाना के फैंस हैं, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ऐसे ही हमें जैसे एंटरटेन करती हैं वैसे ही एंटरटेन करती रहे अपनी फिल्मों के द्वारा। फिलहाल चलिए बैक टू बैक दो और गाने, विशाल मिश्रा सचिन जुगर के आवाज़ में, उसके बाद अदिति सिंह शर्मा और अरमान मलिक के आवाज़ में।

0: दोस्तों बंटवारा 1947 के एक नए पोस्टर ने बढ़ाया कंफ्यूजन, क्या करण देओल की ऑपोजिट है कियारा आडवाणी। सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म बंटवारा 1947 का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। पोस्टर में करण देओल के साथ नजर आ रही हैं अभिनेत्री को देखकर कई फैंस उन्हें कियारा आडवाणी समझ में आए। हालांकि पोस्टर में दिखाई दे रही अभिनेत्री कनिका कपूर है, जो इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही है। उन्होंने अपने किरदार का पोस्टर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए फिल्म की रिलीज का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कमेंट किया कि पहली नज़र में कनिका बिल्कुल कियारा आडवाणी जैसी लग रही है। हालांकि उनकी अन्य तस्वीरें देखने पर साफ होता है कि ये समानता मुख्य रूप से स्टाइलिंग और पोस्टर डिजाइन की वजह से महसूस हो रहा है। दिल्ली की रहने वाली कनिका कपूर इससे पहले टीवी शो में आ चुकी है, कई सारे टीवी शो में आ चुकी है, और बंटवारा 1947 के निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, तो होपफुली हम सब मिलकर देखेंगे ज़रूर कभी ना कभी ये फिल्म रिलीज़ होने के बाद, और तब बताएंगे कि कैसा रहा ये फिल्म। चलिए बातों को आगे ना बढ़ाते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर सीधे।
1: तो जगह

बढ़ते हैं हमारे अगले तड़के की ओर, जो है अल्लू अर्जुन के नए अवतार पर। जी हाँ, अल्लू अर्जुन का जो नया अवतार है वो करेगा हम सबको सरप्राइज। पुष्पा और रागा के बाद अब लोकेश कनराजन की फिल्म AA23 में अल्लू अर्जुन बिल्कुल नए और अनोखे लुक में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो अल्लू अर्जुन और लोकेश ने इस किरदार के लुक पर लंबे समय तक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया है ताकि दर्शकों को पहले कभी न देखा गया अंदाज देखने को मिले। मेकर्स का दावा है कि AA23 में अल्लू अर्जुन का ये लुक फिल्म की सबसे बड़ी खासियतों में से एक होगा जो फैंस को और बड़ा सरप्राइज देगा। फिलहाल जो भी अल्लू अर्जुन के फैन है तैयार हो जाइए एक नए लुक के लिए अपने फेवरेट स्टार के। और इसी बात पर चलेंगे हम सुनेंगे अगला गाना अमित मिश्रा, अनुष्का मनचंदा और अंतरा मित्रा की आवाज़ में।

दोस्तों, अब आखिरी खबर आज की। जी हाँ, खबर ये है कि शाहरुख खान की जो फिल्म आने वाली है किंग, उसका म्यूजिक राइट्स करीबन 50 करोड़ रुपए में बिके हैं, जो हाल के समय के काफी

बड़ी डील मानी जा रही है। तो क्या लगता है कि कैसा होगा यहाँ का म्यूजिक? ये तो समय आने पर ही पता चलेगा कि म्यूजिक कैसा होने वाला है फिल्म किंग से। फिलहाल हमारा जो काम है वो यूं है कि हम बस इंतजार ही कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, है ना। और इसी तड़के के साथ हमारा जो है आज तीन का तड़का जो का जो अंक है यही समाप्त होता है। और मैं पापी अभी लेती हूँ फिलहाल विदा, आपसे मिलूंगी ठीक 5:15 पर एफएम गोल पर लेकर चाय एंड क्लासिक्स। भाई बारिश पकोड़े और चाय के बारे में ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारे गप्पे लड़ाएंगे और रेडी रहिएगा, फ़ोन कॉल्स लूँगी ज़रूर मैं आपके, और साथ ही साथ प्यारे से रोमांटिक से गाने भी सुनूंगी और सुनवाऊँगी भी। तो रिक्वेस्ट के साथ भी रेडी रहिएगा। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद और एफएम रेनबो पर वापसी होगी ठीक 7 बजे लेकर जाने अनजाने। तब तक के लिए बने रहिए 107 एफएम रेनबो है ये, थोड़ी देर में अगला प्रोग्राम।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, एक बार फिर से स्वागत है मोनोसोवन एफएम रेनबो पर। मैं हूँ पापिया और लेकर आ गई हूँ आप सभी का पसंदीदा
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लो 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला छाया लो।
0: जी हाँ, छाया लोक है प्रोग्राम का नाम और आज है शनिवार का दिन, यानी कि शनिवार है तो फिर
2: जाने अनजाने।
0: दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है जाने अनजाने में, जिसे आज पूरा देश जानता है। ऐसे ही एक चेहरे की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, आज जिस बारे में बात करेंगे जाने अनजाने में, वो है कैमियो, जो शायद आपने नोटिस ही नहीं किया। तो जाने अनजाने में की शुरुआत में चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना सबसे पहले सुन लेते हैं।

तो वैसे जाने अनजाने में बातें हो रही है कैमियो वाले रोल्स की, जो ऐसे सुपरस्टार्स जो जिन्होंने पहले फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स किए, कैमियो किया और उसके बाद काफ़ी बड़े स्टार बन गए। और मेरा इसमें आपसे सवाल ये है कि अगर आपको बॉलीवुड के किसी एक सुपरस्टार के साथ सिर्फ 10 सेकंड का कैमियो करने का मौका मिले या फिर छोटा सा रोल करने का मौका मिले, तो आप किस सुपरस्टार को और किस फिल्म के लिए चुनेंगे? एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ कि अगर आपको बॉलीवुड के किसी एक सुपरस्टार के साथ सिर्फ 10 सेकंड का कैमियो करने का मौका मिले, तो आप किस सुपरस्टार को और किस फिल्म को चुनेंगे? जवाब के लिए इंतज़ार में रहूँगी और बात करूँगी अब फिल्म ताल की। जी हाँ, साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म का संगीत आज भी उतना ही ताज़ा लगता है, लेकिन अगर आप फिल्म के कुछ डांस सीक्वेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे तो बैकग्राउंड डांसर्स के बीच एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देगा और वो थे शाहिद कपूर। फिल्मों में बतौर हीरो आने से पहले शाहिद कपूर डांस ट्रूप का हिस्सा थे। उन्होंने कई फिल्मों और स्टेज शो में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम भी किया। ताल में उनकी मौजूदगी कुछ ही पलों की ही है, लेकिन आज जब लोग उस सीन को दोबारा देखते हैं तो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। तभी भीड़ में नजर आने वाली वही नौजवान आगे चलकर जब वी मेट, कमीने, हैदर और कबीर जैसी फिल्मों का स्टार बना। यही तो फिल्मों का जादू है, कभी कभी सबसे बड़ी कहानी कैमरे के पीछे या भीड़ के बीच छिपी रहती है। तो रेडी है ना आंसर के लिए? फिलहाल आपके साथ बातें करते करते, आपका इंतजार करते करते मोहित चौहान की आवाज में सुन लेते हैं ये गाना।

अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे कैमियो की जिसने फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों को सीट से उठने नहीं दिया था। फिल्म थी पीके। आमिर खान के इस फिल्म ने आखिर में जब कहानी एक नया मोड़ लेती है तभी एक और एलियन धरती पर उतरता है और वो किरदार में नजर आते हैं रणबीर कपूर। दिलचस्प बात यह है कि इस कैमियो की जानकारी रिलीज से पहले पूरी तरह गोपनीय रखी गई थी, इसलिए जब सिनेमाघरों में दर्शकों ने रणबीर कपूर को अचानक स्क्रीन पर देखा तो वो पल अपने आप में एक सरप्राइज बन गया। कुछ ही सेकेंड का ये कैमियो फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चित बातों में शामिल हो गया। कई बार किसी फिल्म में लंबा रोल नहीं बल्कि सही समय पर किया गया छोटा सा कैमियो भी दर्शकों के दिल में जगह बना लेती है। इसीलिए तो आपसे सवाल मेरा ये था कि अगर आपको मौका मिले कि 10 मिनट के लिए आप किसी सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहें या फिर छोटा सा रोल करना चाहें तो वो सुपरस्टार कौन होगा और फिल्म कौन सी होगी। फिलहाल के लिए चलिए रॉकस्टार फिल्म से ये गाना सुन लेते हैं ए आर रहमान और मोहित चौहान की आवाज़ में।

दोस्तों फोन कॉल्स आ रहे हैं पर कट क्यों जा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा सवाल अब भी आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको मौका मिले किसी सुपरस्टार के साथ किसी सुपरहिट फिल्म में एक छोटा सा रोल निभाने का, तो वो सुपरस्टार कौन होंगे और वो फिल्म कौन सी होगी? आपके जवाब का इंतजार ज़रूर है। और अब बात करती है एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज़ के साथ ही युवाओं की पसंद बन गई थी, दिल चाहता है। आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना की इस फिल्म के एक छोटे से दृश्य में बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फरहान अख्तर भी नजर आए थे। ज्यादातर लोग उन्हें कैमरे के पीछे देखने के आदी हैं, इसलिए पहली बार फिल्म देखने वाले दर्शकों का ध्यान शायद उन पर नहीं गया। लेकिन जब बाद में लोगों ने फिल्म को दोबारा देखी तो ये छोटा सा कैमियो चर्चा का विषय बन गया। कई निर्देशक अपनी फिल्मों में एक छोटे छोटे कैमियो करना पसंद करते हैं। इसी फिल्म की दुनिया में एक तरह का ईस्टर एग भी माना जाता है। तो चलिए अब सुन लेते हैं फिर दिल चाहता है से ये गाना।

0: तो ऐसे में हमारे जो है पहले कॉलर वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ. चलिए देखते हैं कौन है. हेलो.
1: हेलो.
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जाने अनजाने में.
1: गुड इवनिंग, मैं जी से बातें कर रहा हूँ.
0: हाँ जी, तू कैसे हो? सब ठीक ठाक? घर पे सब ठीक है?
1: जी बिल्कुल जी, सब ठीक ठाक है. और मैं भी ठीक हूँ, और घर परिवार में भी सब ठीक ही है. और आप कैसे दी?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम लोग की दुआ है. अच्छा बताओ फटाफट की
1: जो प्रोग्राम सुन.
0: हाँ बोलो बोलो.
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत दिन बाद मैं जुड़ पाया हूँ. कभी कभी प्रोग्राम में लाइन बिजी बता देता है, मैं जुड़ नहीं पाता हूँ.
0: कोई बात नहीं, अब बात
1: तो
0: हो रही है ना.
1: जुड़ा हूँ तो देखेंगे कि आपका प्रोग्राम हो रहा है. और आप जो टॉपिक रखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक रखिए.
0: बताओ.
1: तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि कोई हीरो, तो मेरा एक फेवरेट हीरो जैसे कि अक्षय कुमार.
0: अच्छा.
1: तो जैसे मैं मतलब चाहूंगा कि उनके संग में एक फिल्म बनाऊं और उनके संग मतलब थोड़ा एक्टिंग करूं.
0: अच्छा, उनकी जो फिल्में हैं उनमें से कौन सी फिल्में उनके साथ आप देखना चाहेंगे?
1: मैं देखना चाहूंगा मैं खिलाड़ी तू अनारी.
0: अच्छा, मैं खिलाड़ी तू अनारी में आप उनके साथ रोल करना चाहेंगे, है ना? छोटा सा ही सही.
1: और हाँ जी बिल्कुल जी. और साथ में जैसे कोई मतलब कॉमेडी फिल्म अभी ज्यादा चला रहा है, तो मैं कॉमेडी फिल्म में वैसे उनके साथ मतलब एक्टिंग करूंगा और कॉमेडी का रोल मैं ज्यादा निभाऊंगा.
0: ओके ओके, ठीक है ठीक है. जीतू तो कोई बात नहीं, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया. कोई बात नहीं, पर मेरी बात हुई थी जीतू से और वो सुनना भी चाहते हैं मैं खिलाड़ी तू अनारी का टाइटल ट्रैक. तो फिलहाल चलिए सुन लेते हैं उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना.

0: स्टूडियो के घड़ी में समय हो गया 7:32 और हम ऐसे में हमारे जो दूसरे कॉलर हैं वो भी हमसे जुड़ चुके हैं. चलिए देखते हैं कौन है. हेलो.
1: हेलो.
0: हाँ जी नमस्कार. बहुत बहुत स्वागत है आपका.
1: बावरिया बोल रहे थे. शांतनु घोष बोल रही.
0: हाँ शांतनु दा कैसे हैं. सब ठीक ठाक.
1: सब ठीक ठाक. अजय दीदी वाला क्या.
0: हाँ बिल्कुल ठीक हूँ. बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है और क्या. बताइए.
1: अच्छा हमारे पसंदीदा हीरो सनी देओल.
0: ओके.
1: अजय देओल से कोनो फिल्म में सुजीत भाई 2 मिनट बसार से तो भाग्य चाहिए. सेटा होच्छे बॉर्डर फिल्म.
0: ओहो अच्छा बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छा चॉइस.
1: बॉर्डर दीदी सांडे से आती है ये गाना सुनिए देगा.
0: ओके ठीक है. बस आप लोगों का जो ये मतलब आप जो डिमांड करते हैं, आप जो चाहते हैं सुनना, तो वो तो हमारा सुनाना बनता ही है ना. तो चलो फिलहाल सुनाते हैं आपको संदेश ये आते हैं. थैंक यू सो मच शांतनु दा कॉल करने के लिए. फिर मिलेंगे आपसे. तो ये थे शांतनु दा और सुनना चाहते हैं संदेश ये आते हैं. तो चलिए सुन लेते हैं हम सब मिलकर ये गाना.

0: चलिए दोस्तों, अब 7:40 होने वाला है, यानी कि समय हो गया है अगले कॉल लेने का। देखते हैं कौन इंतजार कर रहा हमारे लिए। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायलॉग में। हेलो,
1: हाँ फोनने दीजिए, फोन में आता नहीं है आवाज।
0: आप बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो,
1: सुन पा रही है?
0: हाँ जी बोलिए, मैं सुन पा रही हूँ, बोलिए।
1: अच्छा सुनते पा रही हूँ?
0: हाँ हाँ सुन पा रही हूँ, बताइए।
1: अच्छा अमी बोल चीजे, हमारे प्रिय नायक अच्छे अमिताभ बच्चन। हेलो,
0: हाँ जी सुन रही हूँ, बोलिए।
1: एक मिनट, होने तो घर कब
0: हाँ जी बोलिए। हेलो,
1: बोलिए अमिताभ बच्चन
0: जी, तो आप उनके साथ ही स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे किसी फिल्म में?
1: ऐसा तो सब लोग
0: अच्छा ठीक है, आपने नाम नहीं बताया सर।
1: हाँ मैं अरूप बोल रहा हूँ, हावड़ा से।
0: जी अरूप दा, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो गाना कौन सा सुनना चाहते हैं ये बताइए। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: मैं वो आमन फिल्म का गाना सुनना चाहते
0: हैं। ओके ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपको।
1: आज की रात
0: जी,
1: ऐसी रात मोहम्मद, एक गाना आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं वापस, बाय।

0: इस प्यारे से गाने के बाद चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि समय रह गया है बड़ा ही कम। देख लेते हैं फोन कॉल पर कौन इंतजार कर रहा है। हेलो हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है छाया लोक में। जी बिमल दा, कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक? तो आप कौन सी फिल्म में काम करना चाहेंगे उनके साथ? अच्छा बिमल दा, हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी हेलो, सुन सकते हैं आप?
1: जी आपका आज फोन पे नहीं आ रहा है।
0: हेलो अभी ठीक है?
1: नहीं दीदी, आपका वॉइस फोन पे नहीं आ रहा है।
0: लेकिन मैं अपनी वॉइस सुन सकती हूँ आपकी, शायद रेडियो में आवाज आ रही है।
1: हेलो दीदी।
0: हाँ मैं बोल रही हूँ कि आप सुन सकते हैं मुझे अभी? जी जी बिमल दा, वो मैंने सुना। आप बताइए कि आप आपके फेवरेट एक्टर के बारे में बताएं।
1: अजय देवगन अभिनीत कोई फिल्म का गाना होता है आप सुना दीजिए।
0: अच्छा ठीक
1: है, अजय देवगन।
0: चलिए ठीक है, ओके बाय बाय।
1: देखिए आपके पास पुलाव काटे फिल्म का कोई गाना होता है आप सुना दीजिए।
0: चलिए सुनाते हैं आपको,
1: ठीक है? आपको सब छोटा बंधु को
0: ओके, थैंक यू मिलते हैं बाय। तो फिलहाल चलिए फूल और कांटे से सुन लेते हैं ये गाना कुमार शानू की आवाज में।

दोस्तों अब बारी है एक ऐसे फिल्म की जो अपने आप में कैमियो का खजाना है। ओम शांति ओम। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो याद होगा इसका भव्य अवार्ड फंक्शन वाला गीत दीवानगी दीवानगी। इस एक गाने में बॉलीवुड के 30 से भी ज्यादा सितारे नजर आए थे। सलमान खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंद और न जाने कितने चेहरे। पहली बार गाना देखने वाले दर्शकों का ध्यान गाने की भव्यता पर ज्यादा था, लेकिन दूसरी या तीसरी बार देखने पर हर बार कोई नया सितारा नजर आ जाता। यही वजह है कि ये गाना आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार स्टडेड कैमियो में गिना जाता है। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं इसी फिल्म का ये गाना दीवानगी दीवानगी।

0: चलते चलते दोस्तों इस घंटे के आखिरी जो लिसनर है वो हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में। हेलो
1: पापा जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में। आप नाम बताइए ना।
1: कुमार चंचल बोल रहा हूँ।
0: जी श्याम जी, जी
1: और आपका तो प्रोग्राम जब शुरू होता है हम लोगों से रहा नहीं जाता है और हम लोग चले ही आते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: तो आज मैं जितेंद्र जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।
0: हाँ बिल्कुल कहिए।
1: वो मेरे बहुत प्रिय एक्टर हैं, बहुत पसंद है
0: जी।
1: उनकी बचपन से मैं सारी पिक्चर देख के आ रहा हूँ
0: जी।
1: और उनकी पिक्चर है जीने की राह।
0: ओके,
1: तो मैं उनके लिए जितेंद्र जी के लिए ये कहना चाहता हूँ, बरसात का था मौसम, फुरकैश की फिजाएं
0: जी
1: थम थम के बरसती थी, रहमत की ये सदाएं, बागों के सब्ज पौधे सब लहलहा रहे थे और चंचल के गले मिलकर मल्हार गा रहे थे।
0: थैंक यू, वाह वाह वाह, क्या बात है। वेरी
1: गुड, मेरा गीत है एक बंजारा गाय।
0: वैसे वैसे श्याम जी, अगर अगर आपको मौका मिले कि आप जितेंद्र जी के साथ फिल्म करें कोई, तो वो कौन सी फिल्म होगी?
1: ये मेरा सौभाग्य होगा और आपका भी आशीर्वाद होगा और सारे श्रोता का यदि मेरे ऊपर अगर आशीर्वाद हो जाए तो अगर मुझे फिल्म जीने की राह में जीतन जी का रोल मिलेगा मुझे बहुत पसंद आएगा।
0: ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच।
1: आप भी अगर मेरा सौभाग्य रहा तो जरूर ये काम होगा।
0: बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा,
1: मेरी पसंद का गीत है एक बंजारा गाय।
0: ठीक है, चलिए सुनते हैं हम सब मिलकर ये गाना। ओके
1: नमस्कार,
0: बाय, मिलते हैं फिर। तो ये थे श्याम कुमार चंचल और सुनना चाहते हैं जितेंद्र जी की फिल्म से एक बंजारा गाय। फिल्म का नाम है जीने की राह और इस गीत के साथ ही मैं आपसे कहूंगी अलविदा, क्योंकि मेरे बाद अभी तुरंत आने वाले हैं आपके अपने प्यारे प्यारे रोशन मुरारका जो टेक ओवर करेंगे हमारी सीट और सुनाएंगे आपको ज़बरदस्त गाने, साथ ही साथ फ़ोन कॉल्स रहेंगी। तो बिल्कुल फ़ोन करिए और रिक्वेस्ट करते रहिए गाने। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे विदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही बने रहें 107 FM रेनबो के साथ। जाते जाते एक बंजारा गाए।
2: नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 एफएम रेनबो पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। आज एक बार फिर हाजिर है आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का लेकर कार्यक्रम छायालोक। नंबर डायल करना है आपको अपनी पसंद की फरमाइश के साथ, नंबर है हमारा 2213-1341। और जब तक आप आते हैं तब तक ये प्यारा सा नगमा आपके लिए, क्यों पसंद आएगा ना आपको।

जी हाँ दोस्तों, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, हमारा 2213-1341 और छाया लोग कुछ नहीं। आइए, इंतजार है आपके फोन कॉल्स और आपके फरमाइश का इस गीत के बाद। क्यों है ना?

सावन की हर बूंद में तेरा ही एहसास मिलता है, सावन की हर बूंद में तेरा ही एहसास मिलता है, भीगी हवाओं में तेरा नाम बार बार सुनाई देता है। बरसात तो हर साल चली आती है इस जहां में, बरसात तो हर साल चली आती है इस जहां में, मगर मेरा सावन तभी महकता है जब तेरा साथ मिलता है।

0: चलिए दोस्तों, कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं 2213-1341 पर, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो,
1: हाँ नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार। हेलो,
1: विमल मित्र राजभाषा।
0: हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बताइए।
1: आपका पास गाना सभी थे जन बोले और बोले गांटा जी के, आपका पास आप सुना दीजिए।
0: अच्छा, ये फिल्म देखी है
1: आपने? मायने चल रहा है
0: ना। हाँ जी हाँ जी, वो मैं समझ गया। ये फिल्म देखी है आपने?
1: ना देखी नहीं, किंतु गाना बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, कभी गुनगुनाते हैं गाने को?
1: हाँ।
0: अच्छा, गुनगुनाइए जरा।
1: बोले ओ बोले, ठीक है दादा।
0: ना ना, और थोड़ा गुनगुनाइए ना, अच्छा लगेगा।
1: ठीक है, आप सुना दीजिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: चलिए दोस्तों 2213-1341 पर कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग रावसन जी।
0: गुड इवनिंग,
1: मैं मोनिरुद्दीन बात कर रहा हूँ, दक्षिण शाखा लावड़ा से।
0: बोलिए बोलिए।
1: सबसे पहले आपका प्रोग्राम के बारे में किसी बोलना चाहता हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए।
1: तुम्हारे जाने का गम नहीं, तुम्हारे आने का आस रखता हूँ। तुम्हारे जाने का गम नहीं, तुम्हारे आने का आस रखता हूँ। रोशन जी का प्रोग्राम इतना अच्छा है, हमेशा अपने सीने का पास रखता हूँ।
0: ये पहले भी सुना चुके हो भाई मोरिनुद्दीन, कुछ नया बनाना था ना। हाँ क्या बोल रहे हैं?
1: बोला है ये ऑल टाइम हिट है
2: ना। उन्हीं बोधे उन्नो को तो फोन करते चाहिए चलें, छोटे-छोटे गाने पड़े फिर सी कथा होती है अपने देश आते।

0: हेलो हेलो
1: रौशन जी।
0: हाँ बोलिए।
1: लाइन तो क्रॉस कनेक्शन हो गया।
0: हाँ हाँ क्रॉस कनेक्शन कुछ हो गया था। हाँ बताइए अभी ठीक है।
1: हाँ बोल जो हम बोला वो ऑल टाइम हिट शायरी है।
0: अच्छा नहीं ऑल टाइम हिट भाई कुछ नहीं होता, आपको तो कुछ तैयार करना पड़ेगा ना नया कुछ।
1: अरे हमारी तैयारी है तू।
0: हाँ क्या बोल रहे हैं,
1: पहले बोला है अभी बोला है?
0: चलिए बोलिए।
1: आपके पास गिरफ्तार फिल्म का गाना है?
0: हाँ गिरफ्तार फिल्म का गाना है।
1: ओ अमिताभ बच्चन रजनीकांत वाला ओ जो सॉन्ग है मोहम्मद अजीज और आशा भोसले का वो दिल से दिल की पप्पी।
0: हाँ बोलिए।
1: ये गाना प्लीज सुना दीजिए।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

0: ஹலோ
1: ஹலோ
0: ஹலோ
1: ஹாஂ ஹலோ மேம், பர்காச்சியா கிர்ஜாபுர் பார் ஹவுரா சே பிரசாந்த் தோக் போல் ரா ஹூன்.
0: போலியே.
1: ஹாஸ், முகே அலக் அலக் ஃபிலிம் சே கிஷோர் குமார் கா கா ஹுவா மே ஆக் லகாயி சாவன் கா மஹினா யே கானா சுன்னா ஹை.
0: அச்சா,
1: ப்ரோக்ராம் தோ படியா ஹோ ரஹி ஹை. ப்ரோக்ராம் கே பாரே மே கஹனா சாஹதா ஹூன், பிச்லே ஜப் சப் ப்ரோக்ராம் ஹோதே தே புஜோ தோ ஜானே யா ஆக்டிங் மே கே யா இன்பாக்ஸ் சே ஃபேன் आपके बात आपके गीत जैसे प्रोग्राम फिर से लौट आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा. जैसे बहुत सारे बता थे पुराने, तो अब नहीं मिल रहा है सुनने को.
0: क्यों नहीं आ रहे हैं वो?
1: ये कह रहा हूँ.
0: नहीं, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं ये बताइए. पुराने श्रोता
1: आ रहे, जैसे मैंने बहुत अच्छे खासे प्रोग्राम पिछले बार होते थे तो प्रोग्राम में कोई जलूस नहीं गया.
0: क्या नहीं रहा?
1: ऐसा ऐसा प्रोग्राम शुरू करेगा तो फिर भी सब लौट आएंगे.
0: लौट आएंगे? अच्छा, मतलब आपको अच्छा लग रहा है ना?
1: अब तो अच्छा लग रहा है.
0: लेकिन भाई अगर प्रशांत जी नए नए कॉलर फ्रेंड भी नहीं आएंगे ना तो भी अच्छा नहीं लगता है ना. तो आप अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी फोन करेंगे, है ना, क्योंकि सुनने वाले को अगर हर दिन हर दूसरे दिन
1: बढ़िया से बनाना पड़ेगा,
0: है ना. हाँ हाँ, तो थोड़ा आप अपने दोस्तों को बोलिए वो भी फोन वोन करें, ठीक है. चलिए दोस्तों, सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत.

दोस्तों 13 मिनट और यानी 9 बजे तक आपका ये रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरार का आपके फोन कॉल्स का इंतजार करेगा। नंबर है हमारा 2213-1341। नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 2213-1341। आप फरमाइश लेकर आ सकते हैं हमारे कार्यक्रम छायालोक में, और तब तक सुनिए ये गीत।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त होने में केवल 7 मिनट बाकी हैं। आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते सुनते आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका को यही आज्ञा दीजिए। जाते जाते कुछ यूँ कहना चाहूँगा कि बरसते बादलों ने आज फिर तेरा नाम लिया, बरसते बादलों ने आज फिर तेरा नाम लिया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा ही पैगाम लिया। बरसते बादलों ने आज फिर तेरा नाम लिया, मेरे दिल ने चुपके से तेरा ही पैगाम लिया। सावन की हर बूंद में बस इतना असर है, सावन की हर बूंद में बस इतना सा असर है, याद आए तो दिल और भी बेकरार हो जाता है। आपके दोस्त रोशन मुरारका को यही आज्ञा दीजिए। फिर मिलूंगा। गुड नाइट। शब्बा खैर।